0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: गुड मॉर्निंग इन द नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन. और अगर आप सोच रहे हो कि मेरा दिमाग सही जगह है या नहीं, देन ऑब्वियो नहीं है. एंड इट इज अ डेमोक्रेसी यार, मैं जो चाहूँ बोल सकती हूँ. आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसे इस्तेमाल करते हुए मैं आपको नाइट टाइम में भी गुड मॉर्निंग बोलूंगी. दैट सेड, क्या आपको पता है, दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग आई फाउंड आउट, दैट एक एवरेज कपल एक हफ्ते में 20 मिनट के लिए किस करता है. अब आप ये सोचो कि जो बंदे 20 मिनट निकाल के एक पूरे हफ्ते में किस कर रहे हैं, वो कितना टाइम स्पेंड करते होंगे गेटिंग नॉटी. सोचा है कभी आपने इसके बारे में? और किसिंग से ना, ऑनेस्टली मुझे एक लाइन याद आई फ्रॉम दिस वन स्टैंड अप गर्ल, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, हु सेड दैट आफ्टर द फर्स्ट वन मिनट ऑफ किसिंग समबडी ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने मुंह में एक च्यूइंग गम चबा रही हूँ.
3: Baby, meri hai hai koli mare akhiyon se hai hai koli.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtuala burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Could I speak to Manish, please?
2: Speaking.
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन.
2: ओके
3: राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
2: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं.
3: वही, मतलब... तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप, मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: रंग रेजा.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कितनी खराब बात है कि आपके डॉगी ने जो सैंडविचेस गलती से या इंटेंशनली चाट लिए थे वही सैंडविचेस आपने अपने बॉयफ्रेंड को खिलाए, आपको खराब नहीं लगता ये काम करते हुए?
3: The secret box.
2: But whatever your silly little confession is, मेरे पास उसे सुनने के लिए है नॉन जजमेंटल कान और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: Hey Roshi, how are you?
2: I am very good darling. How are you? आप ऐसे whispered tones में क्यों मुझसे बातें कर रहे हो?
4: Because I'm not good at all and just thought to just talk.
2: क्या हो गया?
4: Over about. मुझे ऐसा लगा कि मैं बस आपको बता दूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है.
2: Okay, I am all ears.
4: Roshi, so I am out with my boyfriend on a trip. हम दोनों घूमने आए हैं, बड़े दिनों के बाद ये प्लान बना है. और हम बाहर घूमने आए हैं एंड एज यूजुअल जो हो सकता है खराब, हमारा झगड़ा हो गया बहुत भयंकर एंड उसमें सारी की सारी मेरे बॉयफ्रेंड की गलती थी.
2: एंड
4: उसने सॉल्व नहीं किया है कुछ भी. हाँ. उसने मुझसे बात ही नहीं किया. हाँ. है वो बस अजीब से सड़े हुए मुंडे बना के जाके सो गया.
2: अभी
4: Can you believe वो सो गया है, वो सो रहा है,
2: वो सो रहा है बिना झगड़ा रिजॉल्व किए अभी as we speak.
4: उसने मुझसे बात भी नहीं करी रोशि, मतलब he did not even try to. ऐसा होता है ना कि चलो चल try किया उसने, मैंने नहीं माना. He didn't even try.
2: और सारी गलती उसकी, obviously सारी गलती लड़कियों लड़कों की होती है रिलेशनशिप में.
4: असलियत में सच में गलती थी रोशि उसकी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. सब छोड़ो आप. हाउ कैन ही जस्ट गो एंड स्लीप विदाउट टॉकिंग टू मी. अच्छा अब आप सुनो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ असली में. सो द पॉइंट इज कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके जो ही वेयर्स लेंसेज, ओके, तो उसने अपने लेंसेज उतारे और जाके सो गया. मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैंने जो उसके आई डोंट नो, प्लीज मुझे जज मत करना, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उसके लेंसेज को हटा के उसमें जो सोल्यूशन था उसको हटा के उसमें वोदका डाल दिया है.
2: एक सेकेंड, आपने
4: लेंसेज डाल दिए है. I was so angry and pissed off. मुझे लग रहा है कि I don't know.
2: एक सेकेंड, तो आपने अभी अभी as we are speaking उसके लेंस बॉक्स में लेंसेज के सोल्यूशन की जगह वॉडका है, तो कल जब वो वॉडका इन्फ्यूज लेंसेज अपनी आंखों में पहनेगा यू नो कितना स्टिंग करेगा वो.
4: I don't want to feel bad, but मैं बहुत गुस्से में उस वक्त हूँ. आप बताओ मुझे मैं क्या करूँ. मैंने कर दिया ये गुस्से में आके, अब बस मुझे नहीं पता.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Yoshi Baba ki jai!
1: Calm down, my bhagjano. अगर आप जानना चाहते हो if your crush actually likes you back or not, तो एक बड़े से ग्रुप में ask one of your friends to crack a joke. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सब हंस रहे होते हैं एक ग्रुप में, हम ऑटोमेटिकली उस इंसान की तरफ देखते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं in that group, to see अगर वो हंस रहे हैं या नहीं. तो अगर आपके क्रश ने आपकी तरफ देखा कि आप उस जोक पर हंसे या नहीं, then मान लो that your crush really likes you too. And this is a psychological trick and you are most welcome for it. ऐसे ही tricks and tips के लिए मुझे सुनते रहो. And you can also ask for personal help on the gram या Facebook. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So find me, hit me up, send me your number so that I can call you. And while you do all of that, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने करियर में या अपनी एजुकेशन में सुपर फोकस्ड हो एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम गेटिंग नॉटी ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन देन मेरा सजेशन है ट्राई नॉट टू डेट एन एरीज पर्सन क्योंकि आई विल टेल यू द वन थिंग अबाउट एन एरीज पर्सन इज उन्हें नॉटी होना इतना अच्छा लगता है दैट एनी गिवन स्लाइटेस्ट बिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी दे विल वांट टू गेट नॉटी विद यू एंड उनके एरोजिनस जोन्स आर एवरीवेयर सर से लेकर पाँव तक एरीज इज मोस्ट लाइकली द पर्सन हु इज गोइंग टू हैव अ किंक अबाउट फीट एज वेल सो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इफ यू आर somebody जिसे बड़े मजे आते हैं हर जगह एडवेंचर पैशन एक्साइटमेंट दिखाने के देन टोटली डेट एन एरीज अगर आप एक ऐसे इंसान हो हु वांट्स अ मोर सोबर सटल काइंड ऑफ लव लाइफ इन द मोस्ट सटल सोबर काइंड ऑफ वेज देन एक वर्गो को डेट कर लो बिकॉज दे आर एक्चुअली लाइक वेरी प्रॉपर हा अब आप बताओ कि आप इन दोनों साइंस या फिर एनी साइन इन बिटवीन को डेट कर रहे हो हाउ इज इट गोइंग फॉर यू एंड टू डिस्कस योर लव लाइफ हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE एंड व्हाइल यू फाइंड मी कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मुझे ना आज तक अरेंज मैरिज का सीन ही नहीं समझ में आया. मतलब यू डोंट नो पर्सन फ्रॉम एडम दो दिन पहले तक, और दो दिन के बाद यू आर सपोज टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद दिस पर्सन. मुझे ये कॉन्सेप्ट इतना वियर्ड लगता है कि मेरी नानी और मैं, वीव स्पेंड मोस्ट ऑफ आर लाइव्स आर्ग्यूइंग अबाउट दिस, बिकॉज उन्हें लगता है कि अरेंज मैरिज रॉक्स, मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट लव मैरिजेस. आपको क्या लगता है इसके बारे में? हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड टेल मी योर ओपिनियन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर अभी कार्तिक है with a problem which is quite similar. Hi Karthik.
3: Yes Roshi.
2: How are you my darling?
3: Little bit confused.
2: है ना, मैंने जब आपके Instagram पर messages पढ़े, I was like, I have to call him up right now, because इसकी जिंदगी तो मतलब रायते फैल रहे हैं भाई. क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में?
3: Before 3 years, मेरी engagement पक्की हुई थी, but due to some extra reason from the girl side, I broke up with that relationship. वो arranged था. तो उसके बाद 3 years, my family searching for the another girl, and recently एक लड़की को मैं देखने गया, और like I was like, ठीक है चलो यार, okay. Family भी बोल रही है और लड़की भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना. तो मैंने भी हाँ कर दिया. उसके बाद ये हुआ कि अभी मैं उस लड़की के साथ बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब और फीलिंग दैट ओके आई एम गेट एंगेज, और जो नॉर्मली होते हैं ना लोग एक्साइटेड, आई एम नॉट गेटिंग एक्साइटेड. और समटाइम आई एम गेटिंग लाइक ओके ठीक है चलो, कॉल आया तो बात कर ली, नहीं आया तो जाने दो.
2: यार ये तो थोड़ा सा लाइक शेडी सीन. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो पहले 3 महीने होते हैं एक रिलेशनशिप में, उसमें हॉर्मोन्स इतने एक्साइटेबल होते हैं, और आपकी ब्रेन की जो कॉकटेल है वो सच में कॉकटेल बन गई होती है, और बहुत सारे फील गुड हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं. अब आई थिंक आप एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, क्योंकि अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा है तो योर लेवल ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन विद दिस गर्ल या इमोशनल अट्रैक्शन विद दिस गर्ल काफी कम है, ऐसा मुझे लग रहा है.
3: Yes, you are right. The same thing happened with the first time before 3 years when I got engaged. Okay,
2: wow.
3: But it is just for the 15 or 20 days, not max. Then, but उस time पे ना सब कुछ यार like call करना है, video call करना है, बात करनी है, ये चाहिए वो चाहिए. But now I don't know what is going on. I am also like the girls is super excited. Okay? So I am also feeling guilty. Like
2: naturally,
3: okay, I'm like.
2: यार आप एक काम करो, ठीक है? अपने आप को ना एक cut off period दे दो कि अगर इस time तक I don't start feeling something, then I am going to actually bring this up with the girl and tell her कि मुझे इतनी excitement नहीं.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: As a girl जो अभी अभी 18 years की हुई है, I want to ask you कि अगर कोई life lessons होते जो आप एक 18 year old को दे सकते होते, what would those life lessons be?
0: Roshi के DM से.
2: What a beautiful question this is, Kanika. Thank you for it. मुझसे ऐसे अजीब सा सवाल अभी तक इतने सारे सालों में किसी ने नहीं पूछा है. But if I had to give you a couple of life lessons, it would be ज़्यादा केमिकल्स मत यूज़ करना अपने बालों पर. यू विल एंड अप हैविंग टेरेबल हेयर एज यू ग्रो ओल्डर. मैंने हर तरह के केमिकल्स यूज़ किए थे. आई पर्म्ड माई हेयर, स्ट्रेटन माई हेयर केमिकली, यूज्ड अ लॉट ऑफ अमोनिया वाला कलर, एंडेड अप हैविंग एलोपीशिया, सो दैट्स अ बिग नो नो. सेकेंड, आई थिंक पार्टीइंग शुड कम थोड़ा ना लाइक इंटरमिटेंटली. अगर आप रोज़ रात को पार्टी करोगे, बाई द टाइम यू हिट योर लेट 20s, योर स्किन, योर हॉर्मोन्स, एवरीथिंग विल गो क्रेजी. One thing that I learned pretty late in life was कि जो boring boys होते हैं वो actually losers नहीं होते हैं. They're quite lovely. Bad boys are just that, bad boys. And I think the last thing जो मेरे हिसाब से life lesson है, for no matter who you are and how old you are and जो भी, is drink lots of water. अगर आप properly hydrated हो, आपके hormones, आपके moods, आपके feelings, आपकी skin, आपकी intestines, everything is going to be a really, really happy thing and it will thank you. That said, मुझे शायद जाके पानी पी लेना चाहिए. काफ़ी घंटों से मैंने पानी नहीं पिया है. On that note, अगर आपके पास भी कोई भी सवाल है, this was such a beautiful question, why don't you hit me up on the gram या Facebook? I'll be so happy to take it up. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सुना, go ahead, do whatever you have to do. Lekin kahin mat jana, jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot. Suraj

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे फॉर सम रियली रैंडम रीजन डेड एंड्स में इंटरेस्ट है, देन लेट मी टेल यू कि डेड एंड्स का बेस्ट एग्जांपल है फॉलिंग इन लव विद समबडी जो शादीशुदा है. उससे होता क्या है कि आपको एक शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है. अब वो शादीशुदा इसलिए क्योंकि वो शादी से निकल नहीं पा रही या नहीं निकलना चाहती और उस इंसान के दिल में दो लोगों की जगह है. अब उस जगह में आप फिट तो हो गए हो, लेकिन अब आपको समझ नहीं आएगा कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले. तो बेसिकली फॉलिंग इन लव विद अ मैरिड पर्सन, विच माई बेस्टी इज करंटली इन राइट नाउ, इज अ लॉट लाइक द चक्रव्यूह. कि अंदर जाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन बाहर कैसे आए ना आपको समझ में आता है, ना आपके शादीशुदा पार्टनर को समझ में आता है. आप अपने पार्टनर से कहते हैं कि भाई अपनी बीवी को छोड़ दो. भाई कहते हैं कि बीवी को तो छोड़ दे, लेकिन छोटी बच्ची है, उसका क्या होगा. तो आप कहते हैं कि हम चले जाते हैं, लेकिन आपके पीछे पीछे भाई एग्जैक्टली 3 घंटे में लॉस्ट लिटिल पपी की तरह आ जाते हैं. देन यू डोंट नो व्हाट टू डू. यू एंड अप टेलिंग हिम आई लव यू, एंड देन ही एंड्स अप टेलिंग यू आई लव यू टू. लेकिन सडनली उसकी पत्नी का फोन आता है. ही इज लाइक यार 2 मिनट देना, मैं अभी वापस आता हूँ. And the story goes on and on and on. और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ऐसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एंड ऑल्सो टॉक्सिक कम से कम नहीं तो 8-9 साल आराम से चला.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कितनी खराब बात है कि आपके डॉगी ने जो सैंडविचेस गलती से या इंटेंशनली चाट लिए थे वही सैंडविचेस आपने अपने बॉयफ्रेंड को खिलाए, आपको खराब नहीं लगता ये काम करते हुए?
3: The secret box.
2: But whatever your silly little confession is, मेरे पास उसे सुनने के लिए है नॉन जजमेंटल कान और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: Hey Roshi, how are you?
2: I am very good darling, how are you? आप ऐसे विस्पर टोन्स में क्यों मुझसे बातें कर रहे हो?
4: Because I'm not good at all and just thought to just talk.
2: क्या हो गया?
4: Over about. मुझे ऐसा लगा कि मैं बस आपको बता दूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है.
2: Okay, I am all ears.
4: Roshi, so I am out with my boyfriend on a trip. हम दोनों घूमने आए हैं, बड़े दिनों के बाद ये प्लान बना है. और हम बाहर घूमने आए हैं एंड एज यूजुअल जो हो सकता है खराब, हमारा झगड़ा हो गया बहुत भयंकर एंड उसमें सारी की सारी मेरे बॉयफ्रेंड की गलती थी.
2: एंड
4: उसने सॉल्व नहीं किया है कुछ भी. उसने मुझसे बात भी नहीं किया है. वो बस अजीब से सड़े मुंडे बना के जाके सो गया.
2: अभी
4: कैन यू बिलीव वो सो गया है? वो सो रहा है
2: बिना झगड़ा रिजॉल्व किए अभी एज वी स्पीक.
4: उसने बात भी नहीं करी रोशि, मतलब ही डिड नॉट इवन ट्राई टू. ऐसा होता है ना कि चलो चल ट्राई किया उसने, मैंने नहीं माना. ही डिडंट इवन ट्राई.
2: और सारी गलती उसकी, ऑब्वियसली सारी गलती लड़कियों लड़कों की होती है रिलेशनशिप में.
4: असलियत में सच में गलती थी रोशि उसकी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. सब छोड़ो आप, हाउ कैन ही जस्ट गो एंड स्लीप विदाउट टॉकिंग टू मी. अच्छा अब आप सुनो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ असली में. सो द पॉइंट इज कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके जो ही वेयर्स लेंसेज, ओके, तो उसने अपने लेंसेज उतारे और जाके सो गया. मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैंने जो उसके, आई डोंट नो, प्लीज मुझे जज मत करना, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उसके लेंसेज को हटा के उसमें जो सोल्यूशन था उसको हटा के उसमें वोदका डाल दिया है.
2: एक सेकेंड, आपने
4: लेंसेज डाल दिए है? I was so angry and pissed off. मुझे लग रहा है कि I don't know.
2: एक सेकेंड, तो आपने अभी अभी as we are speaking उसके लेंस बॉक्स में लेंसेज के सोल्यूशन की जगह वॉडका है, तो कल जब वो वॉडका इन्फ्यूज लेंसेज अपनी आंखों में पहनेगा, यू नो कितना स्टिंग करेगा वो.
4: I don't want to feel bad, but मैं बहुत गुस्से में उस वक्त होशी. आप बताओ मुझे मैं क्या करूं? मैंने कर दिया ये गुस्से में आके. अब बस मुझे नहीं पता. I just thought कि मैं आपको बता दूंगी मैंने ये कर दिया.
2: और हम pretend करेंगे कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि फिर I will be compelled to tell you कि भाई यार वो वॉडका हटा के लेंस सॉल्यूशन वापस रख दे. और अगर वो बिना आपसे झगड़ा रिजोल्व किए सोया है, ही डिजर्व्स वॉडका इन हिज आईज. मैं आपको रोशिफाई कर रही हूं और हम भूल जाएंगे और आप सो जाओ, ठीक है? या
0: You've been Roshified.
4: Don't know Roshi, but it just feels good. मैंने ऐसे पूरा भड़ास निकाल दिया था, मुझे better feel हो रहा है.
2: I am so glad you're feeling better. मेरी गीत उसकी किसी फोटो को आग नहीं लगाना है, उसे आग नहीं लगाना है. कोने में जाके सो जाओ और अगर बहुत बदतमीजी करेगा या स्नोर करेगा, just kick him out of bed and let him wear his lenses and just text me and tell me what happens tomorrow, okay?
4: Thank you for listening to me.
2: All the best to you, my darling. This is crazy AF. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा कोई secret confession है, ya Allah, I want to hear all about it on Insta ya FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. And while you do that, you can also WhatsApp me. मेरा number है 9930983983. On that note, do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एयरपोर्ट्स पे शायद ज़्यादा सिंसेयर किसेस होती है दैन इवन इन वेडिंग हॉल्स, एंड शायद हॉस्पिटल्स में ज़्यादा सच्ची दुआएं होती हैं एज अपोज टू एक मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा, क्योंकि प्यार का एहसास सबसे ज़्यादा तब होता है जब प्यार हमें छोड़ कर जा रहा होता है. बट माई पॉइंट इज़ कि प्यार के जाने का इंतज़ार करना ही क्यों है. मैं पता क्या करती हूँ, रोज़ एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में, जो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, दैट कुड बी माई मॉम, माई ब्रदर, माई बेस्ट फ्रेंड, कोई भी, माई बे, मैं हमेशा उन्हें एक आई लव यू नोट लिख कर भेजती हूँ, विच आई मीन अपने दिल से. हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट मैं उन्हें प्यार जताने में लगाती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कल मैं ना हूँ या वो ना हो टू रिसीव द लव. और अगर ऐसा कभी हो तो मैं जब पीछे मुड़कर देखूंगी ना, आई रियलाइज़ कि मैंने ज़िंदगी का हर पल इस्तेमाल किया टू टेल दैम दैट आई रियली लव दैम, सो दैट मेरी ज़िंदगी में प्यार ज़्यादा और रिग्रेट कम हो. अगर आपकी भी जिंदगी में आप ये ऐसा ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हो, ग्रेट. अगर नहीं करते हो, ट्राई टेलिंग समवन रियली क्लोज टू यू दैट आप उनसे कितना प्यार करते हो एंड वॉच देयर एक्सप्रेशन चेंज फॉर द बेटर. एक बार इसे ट्राई करके देखो, वंस इट वर्क्स फॉर यू, थैंक यू किसे ही बोलोगे. मुझे बोलने के लिए यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गिव अ हेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोथ.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: Why is Bollywood not making us curious often enough? यार देखो ट्रेलर आता है और दो मिनट में लगता है कि हमें तो सब कुछ समझ आ गया है. Formula सेम है, एक्शन सेम है, कॉमेडी सेम है, बस एक्टर्स नए हैं. लेकिन पिछले हफ्ते कुछ फिल्मों ने वाकई क्यूरियोसिटी जगाई है. हैवान ने कहा अब किलर अक्षय एक ब्लाइंड सैफ एंड प्रियदर्शन. टॉक्सिक ने कहा या तो ब्रिलियंटली गुड या तो टेरिफाइंगली बैड. और आवारापन 2 ने ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी यादों को दोबारा जिंदा कर दिया. शायद लोगों को अब बड़ी फिल्में नहीं ज्यादा सरप्राइजिंग फिल्में चाहिए, क्योंकि थिएटर तक स्टार नहीं दोस्त, क्यूरियोसिटी खींच के लेके आती है. हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक काउंटडाउन, जहां पे म्यूजिक से बड़ी होती है बातें. एंड स्टार्टिंग ऑफ नंबर 20 पर है कॉकटेल 2 का ये गाना संग बाय द किंग अरिजीत सिंह, ये है तुझको.
4: नंबर

तुझको के बाद नंबर 19 पर है एक ब्रांड न्यू एंट्री फ्रॉम राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है। अमित त्रिवेदी का ये गाना है कॉल्ड रंग बरसे, नो कनेक्शन टू दी ओल्ड अमिताभ बच्चन क्लासिक। इसे गाया है राघव चैतन्य और शिल्पा राव ने एंड अल्फाज हैं कुमार भाई के। एक बहुत ही अच्छा गाना जो एक ऑर्डिनरी फिल्म से कई ज्यादा अच्छी फिल्में होना डिजर्व करता था। नंबर 19।

0: जाइए सजना एंड धुरंधर, इंडिया और पाकिस्तान को आज के नजरिए से देखती है, लेकिन आजादी के इस हफ्ते हम 80 साल पीछे जा रहे हैं, पार्टीशन तक, बंटवारे तक। अजीब बात है ना, 80 साल हो गए लेकिन हम अब भी उसी कहानी पर फिल्में बना रहे हैं। ट्रेन्स, सरहदें, बिछड़ते परिवार, छूटते हुए घर, और वो लोग जिन्होंने एक मुल्क को पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में जिंदगी शुरू की। सब कह चुके हैं, सब दिखा चुके हैं, तो फिर अब नया क्या होगा। मेरे लिए बंटवारे पर फिल्म बनाने का असली चैलेंज यही है। इतिहास ने तो कहानी लिख दी है, अब सिनेमा को नजरिया ढूंढना है, क्योंकि ऑडियंस को दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंटवारे ने क्या छीना। हमें ये देखना है कि उसके बाद लोगों ने क्या बनाया। थिएटर्स में इस हफ्ते पार्टीशन पर एक और फिल्म आ रही है, जिसे बनाया है राजकुमार संतोषी ने, एंड इट स्टार्स सनी देओल, एंड इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। देखना यह होगा कि 80 साल बाद ये जो नया इंडिया है, क्या बंटवारे की उस कहानी को उतना ही प्यार देगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिसमें बंटवारे को दिखाया है, तो एक फिल्म मुझे और याद आती है, जहां पे एक ऐसा बच्चा जिसने अपना घर खोया, अपने परिवार को खोया, और फिर दुनिया को अपना नाम याद करवा दिया। एक रेफ्यूजी जो इंडिया का एक महान एथलीट बना, मिल्खा सिंह। उनकी जिंदगी पर आधारित ये कहानी भाग मिल्खा भाग, और उसका सबसे पावरफुल गाना संग बाय सिद्धार्थ महादेवन, संगीत शंकर एहसान लॉय का, और लिखा है प्रसून जोशी ने। ये है जिंदा।
1: पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 7.

0: तुम्हें वो बंधु की वो केयर फ्री सी दुनिया जहां दोस्त हैं, रोमांस है और लाइफ थोड़ी सिंपल लगती है। करण जौहर ने अपनी पहली दो फिल्म्स में हमें इसी दुनिया का सपना दिखाया था। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बड़े घर, बड़े इमोशंस, बड़े गाने। और फिर 2006 में करण ने खुद अपने बनाए हुए ड्रीम वर्ल्ड में एक दरवाजा खोला, कभी अलविदा ना कहना। एक ऐसी कहानी जहां शादी है, प्यार है, लेकिन प्यार के बावजूद लोग खुश नहीं है। इंडिया ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा इट वाज अ ब्रेव फिल्म, किसी ने कहा ये तो एंटी संस्कारी है। करण खुद मानते हैं कि फिल्म थोड़ी ओवरब्लोन थी, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। शायद 20 साल बाद हम समझने लगे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। मेरा एक सवाल जरूर है, करण ने इनफिडेलिटी को जज नहीं किया, लेकिन क्या उन्होंने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की? क्योंकि वो कहानी के बीच में नहीं खड़े थे, वो बस दूर से देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है, कभी अलविदा ना कहना के बाद करण जौहर ने कभी पहले जैसी फिल्में नहीं बनाई। वो उस फिल्म से पूरी तरह उबर नहीं पाए। 20 साल बाद उसी फिल्म का एक गाना जो शायद वक्त से कभी बाहर ही नहीं हुआ, तुम ही देखो ना, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में। दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

तबाही टॉप 5 में आ गया है और उसी वक्त टॉक्सिक के ट्रेलर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, भाई ये फिल्म है क्या? देखो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई, ये फिल्म या तो ब्रिलियंटली गुड होगी या टेरिफाइंगली बैड होगी, बीच का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कहानी है गोवा की, लेकिन वो गोवा नहीं जो हम पोस्ट कार्ड्स में देखते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं। ये 1960s के गोवा की कहानी है। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और इसी दुनिया में पावर है, ग्रीड है, गैंग्स हैं, और वायलेंस इतनी कि कभी कभी लगता है कि स्क्रीन भी खून से भीग जाएगा। और जो इस फिल्म में औरतें हैं, द वेमेन, जी हाँ, कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह फ्रेम किया गया है, जिस तरह सेक्सुअलिटी और वायलेंस को उनके साथ मिक्स किया गया है, वो एम्पावरमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच की जो लाइन है उसे बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्लर करती है। शायद इसलिए टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे एक्साइट करने से ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना एक्सट्रीम होने की परमिशन खुद को बहुत कम लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैडनेस सिनेमा बनेगा या सिर्फ मैडनेस ही रह जाएगा, ये तब पता चलेगा जब फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टॉक्सिक को हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे टू गुड ओल्ड फैशन बॉलीवुड। ये कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना ऊंचा लंबा कद, विच इज ऑन नंबर 4 दिस वीक। नंबर 4।

कभी वो आदमी जो खुद से ही हार रहा था, लेकिन हर बार उनके पीछे एक ऐसा गाना जरूर था जो पिक्चर से बाहर निकल गया।

जरा सा जन्नत से निकला था, लेकिन कितने लोगों की अपनी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। किसी को शायद वो पहली बार किसी के लिए फील करना याद आया, किसी को वो रात याद आई जब फोन हाथ में था और मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी।

0: फिर आया बीते लम्हे और जिस सिन से गाना था द ट्रेन, उसकी कहानी पीछे रह गई, लेकिन हार्ट ब्रेक की कहानी में ये गाना आज भी फ्रंट रो में बैठा है।
1: बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
0: और फिर बोल दो ना जरा, वो तो जैसे उन लोगों का गाना बन गया जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कह नहीं पाते। शायद इसलिए इमरान की सबसे बड़ी लेगेसी उनका बॉक्स ऑफिस नहीं रही है। इमरान की फिल्मों ने हमें अपने इमोशंस के लिए गाने दिए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट आवारापन, उस लेगेसी में एक और खूबसूरत एडिशन। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदल रही। 37 हफ्तों से गाना इस काउंटडाउन पे मौजूद है एंड इट स्टिल इज नंबर 1 ऑन द मिर्ची टॉप 20। द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द काउंटडाउन वंस अगेन इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर बाय अरिजीत सिंह।
2: नंबर 1।

आज का एपिसोड सिर्फ काउंटडाउन नहीं था, एक बच्चे की कहानी थी जिसने अपना घर खोया और एक देश को नाम दिया। एक सवाल था कि 80 साल बाद हम क्या बन गए हैं, और कुछ गाने थे जो आजादी को सल्यूट नहीं करते

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हेलो हेलो, श्रेया हाजिर हो गई है। अब जैसे ही उस जमाने के गाने सुनोगे तो उस जमाने की बातें तो याद आएंगी, और जब बातें आएंगी तो इस जमाने की श्रेया याद आएगी। हेलो हेलो, वेलकम। अच्छा, आज जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे ना, वो पहली फिल्म बड़ी सारी चीजों में थी। फर्स्ट इंडियन फिल्म जो कि सबसे लंबी थी, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर मेड, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसके दो ब्रेक्स थे, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसमें राज कपूर साहब कलर में थे, यानी द फिल्म दैट ही डिड वाज इन कलर, एंड द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसने भाई यूरोप में जाकर के अपने बहुत सारे सीन्स शूट किए। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बात होगी, यानी राज कपूर साहब की संगम की बात होगी। तो बस करेंगे बड़ा सारा संगम उस जमाने के गानों के साथ। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म संगम की बात हो रही है। वेल, ये फिल्म फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बहुत सारे मामले में थी। एक तो राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो कि लॉन्गेस्ट थी और इसमें दो एड ब्रेक्स थे, मतलब दो ब्रेक्स थे, नॉट एड ब्रेक्स, प्रॉपर ब्रेक्स थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। अब मैं ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ इसी फिल्म की। सो राज कपूर साहब ने इस फिल्म की स्टोरी ना वैजयंती माला जी को नरेट की थी और वो काफ़ी टाइम तक उनका वेट करते रहे कि अब भाई वैजयंती माला से यस आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा कि वो ये फिल्म करना चाहती हैं, वो उनके ऑपोजिट उनकी राधा बनेंगी। लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। एक महीना, दो महीना, तीन महीने बीत गए। फिर उस टाइम पे ना टेलीग्राम चलते थे, यानी अब मैं कैसे बताऊँ, आजकल का व्हाट्सएप आप ले लो, एज इन लेटर्स जाया करते थे पोस्ट कार्ड्स के थ्रू, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी मैसेज पहुंचाना होता था वो टेलीग्राम के थ्रू होता था। तो एक दिन एक शाम को राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिखा वैजयंती माला को और उन्होंने उस टेलीग्राम में लिखा, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। क्योंकि इसमें वैजयंती माला जी का जो रोल था वो राधा कहलाना था। आगे क्या हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी आपको वापस श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तो राज कपूर साहब ने लिख करके पूछ लिया टेलीग्राम के थ्रू, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। फिर क्या, उधर से भी टेलीग्राम आया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आज संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट फिल्म ऑफ राज कपूर साहब जो कि कलर में थी, इंडिया की पहली फिल्म जो यूरोप जाकर के शूट हुई थी। वेल, इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर। ऑफकोर्स इसके बाद आई थी मेरा नाम जोकर जो और भी लंबी थी। सो मैं बात कर रही थी कि जब राज कपूर साहब ने ना इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, इस फिल्म का नरेशन अपनी हीरोइन वैजंती माला जी को सुनाया, तो ही वॉज वेटिंग कि भाई अब हाँ आएगी, अब हाँ आएगी, लेकिन वैजंती माला की कोई हाँ ही नहीं आई। 2 से 3 महीने के बाद राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिख करके भेजा। उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मूवी का नाम संगम और कैरेक्टर जो कि वैजंती माला को करना था उसका नाम राधा। तो उधर से भी एक रिप्लाई आया टेलीग्राम के थ्रू, होगा होगा होगा। और इसी को भाई इस गाने में रखा गया, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। वैजंती माला जी का होगा होगा होगा भी है इस गाने में। कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ये वही टाइम था जब इंडस्ट्री के तीन दिग्गज दिलीप साहब, राज कपूर साहब और देवानंद कोशिश कर रहे थे हिंदी सिनेमा में कलर लाने की। इसीलिए उनके सामने अगर कोई यू नो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आ रही थी वो रिजेक्ट कर दे रहे थे। एंड दैट इज व्हाई राज कपूर और देवानंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर में सबसे पहली कलर फिल्म्स लॉन्च करी। वेल दिस वाज द टाइम जब देवानंद पहली फिल्म which was in color under Navketan Productions guide इसको बना रहे थे and simultaneously राज कपूर साहब RK film banner के under संगम बना रहे थे। ये दोनों फिल्में almost एक दूसरे के साथ साथ रिलीज हुई थी। पुरानी जीन्स पे आज संगम की बातें चल रही हैं, तो बस कहीं भी मत जाइएगा, इस फिल्म की बातों का और इस फिल्म के गानों का संगम भी होता रहेगा यहाँ।
1: मेहरबान लिखूं

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

राज कपूर साहब ने बस ठान लिया था कि वो ना दिल्ली में जाकर के इस गाने की शूटिंग करेंगे, लेकिन उनको वो थोड़ा सा सुनसान रास्ता, वो पेड़ पौधे जिस पे वो बस चल रहे हैं गाना गाते हुए, वो लोकेशन दिल्ली में मिली नहीं रही थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इट इज सेड दैट द शोमैन ना हैड अ कीन नज़र। जब उनको लोकेशन चूज करनी होती थी तो वो यू नो एक से एक एग्जॉटिक लोकेशन भी कैंसिल कर देते थे अगर उनको लोकेशन में मजा ना आए तो। तो जो अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ फ्रॉम द फिल्म संगम, ये है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। इस गाने की शूटिंग के लिए राज कपूर साहब को ना एक सन्नाटे वाली सुनसान सी रोड चाहिए थी, और ऐसा चाहिए था कि बहुत सारे पेड़ पौधे हों। वो दिल्ली गए अपनी पूरी यूनिट को लेकर के, लेकिन वहाँ पे ना उनको कोई लोकेशन ही नहीं समझ में आ रही थी। आखिरी दिन जब हताश होकर के लौटने वाले थे, उनकी नज़र पड़ी एक गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे, एंड देन ही सेड कि अरे बस यही तो मैं ढूंढ रहा था। स्पेशल परमिशन ली और ये गाना एक्चुअली में दिल्ली में शूट हुआ है। ये गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने पूरा फ्रीडम दिया दिलीप साहब को, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि दिलीप साहब इस फिल्म में उनके साथ काम करें। तो उन्होंने ये फ्रीडम दिया कि वो कोई भी रोल चूज कर सकते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ फिल्म संगम की, जो आर के फिल्म्स की फर्स्ट कलर फिल्म भी बनी। सो राज कपूर साहब वांटेड टू वर्क विद दिलीप साहब, ही रियली वांटेड कि वो किसी तरह इस फिल्म में आ जाए। तो उन्होंने ना उनको ऑप्शन दिया था कि वो रोल भी चूज कर सकते थे जो राज कपूर साहब का था, और वो रोल भी चूज कर सकते थे जिसमें बाद में राजेंद्र कुमार आए। दिलीप साहब का कई महीनों तक का हाँ का वेट करते करते जब वो एक दिन दिलीप साहब से मिलने गए, तो दिलीप साहब ने उनको साफ साफ पता है क्या कहा कि वो राज कपूर के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि दिलीप साहब ने कहा कि तुम्हारी फिल्म है और इसमें पूरी लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे, यू आर द शोमैन। फिर ये रोल गया राजेंद्र कुमार को, लेकिन एक बैकअप प्लान भी था। क्या था बताऊंगी आपको, श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

फिरोज खान ना एंड तक बस ये होप करते रहे कि शायद शायद शायद ऊपर वाले प्लीज राजेंद्र कुमार इस रोल के लिए मना करते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम, इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, इंडिया की पहली फिल्म जो कि यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म। सो मैं बता रही थी कि इसमें जो रोल किया है राजेंद्र कुमार ने, वो रोल सबसे पहले दिलीप साहब को गया था, लेकिन दिलीप साहब ने राज कपूर साहब को ये कहते हुए मना कर दिया कि भाई सारा लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे बिकॉज यू आर द शोमैन। फिर उसके बाद ये रोल गया राजेंद्र कुमार को। अब राजेंद्र कुमार जब तक यस कहते तब तक राज कपूर साहब को अप्रोच किया उनके दोस्त फिरोज खान ने, और फिरोज खान का बेहद मन था टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एवरीबडी वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ आरके फिल्म्स। तो क्या हुआ, हुआ ये कि भाई राज कपूर साहब ने उनको प्रॉमिस किया कि अगर राजेंद्र कुमार मना कर देंगे तो ये रोल फिरोज खान करेंगे। अब भाई राजेंद्र कुमार ने मना नहीं किया और फिरोज खान का वो सपना टू बी अ पार्ट ऑफ राज कपूर फिल्म्स वो सपना ही रह गया। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें यानी संगम की बातें विद मी श्रेया। और हाँ, अगर मुझसे कुछ अलग से पर्सनल बात करनी हो तो फेसबुक और इंस्टा पे तो मैं हूँ ही RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA श्रेया विद लव।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

इस खत को गाने में बदला था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम। सो हसरत जयपुरी साहब, शंकर जयकिशन जी, ये इनकी टीम थी, गाने बनाया करते थे। शंकर जयकिशन जो थे वो गाने कंपोज करते थे और हसरत जयपुरी गाने लिखा करते थे। राज कपूर साहब की फिल्मों में या तो हसरत साहब गाने लिखते थे या फिर शैलेंद्र जी। सो हुआ ये कि हसरत साहब का आर्ग्यूमेंट हुआ शंकर जयकिशन जी से एंड इसकी वजह से ना इन लोगों में काफ़ी लंबे अरसे तक बात नहीं हुई। अब क्या हुआ, हसरत साहब ने एक दिन खत निकाला और

तुम मेरी बंदगी हो। और जैसे ही शंकर जयकिशन जी ने खत पढ़ा, फटाक से हसरत साहब को गले लगा लिया। वेल, इसी खत को फिर गाने में तब्दील किया गया, संगम का द फेमस सॉन्ग ये मेरा प्रेम पत्र बाय रफी साहब। ये गाना मैं आपको ऑलरेडी सुना चुकी हूँ, तो एक और रफी साहब का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब इसी फिल्म से एडिटर भी बने थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, मूवी का नाम है संगम, जो आर के फिल्म्स की पहली कलर फिल्म थी। इस फिल्म को एडिट भी करने वाले थे राज कपूर साहब, एंड इसके बाद उन्होंने अपनी सारी फिल्मों को एडिट किया, फिर चाहे वो मेरा नाम जोकर हो या फिर बॉबी हो। तो इसी फिल्म संगम का बड़ा खूबसूरत गाना है आपके लिए हर दिल जो प्यार करेगा। अप नेक्स्ट

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुंबई के फेमस सिनेमा हॉल का नाम संगम रख दिया गया था। अंधेरी ईस्ट में है आज भी ये फेमस सिनेमा हॉल जिसका नाम है संगम। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इस हॉल के जो ओनर्स थे ना, देवर टंडन फैमिलीज एंड देवर ह्यूज फैन ऑफ राज कपूर साहब। राज कपूर साहब जब अपनी फिल्मों को लॉन्च करते थे तो बस इसी हॉल में ना प्रीमियर्स भी होते थे, तो राज साहब खुद भी जाया करते थे। ये पूरी फैमिली राज साहब की द शोमैन की इतनी बड़ी फैन थी कि आफ्टर द फिल्म संगम दे एक्चुअली नेम्ड देयर हॉल एज संगम। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, इसी फिल्म की नॉनस्टॉप बातें चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना। और हाँ, अगर श्रेया से वन टू वन बात करनी है, इस आवाज के पीछे भी जो चेहरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा ऑन फेसबुक और इंस्टा, RJ श्रेया विद लव। दैट्स RJ SHRUYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: only on Radio Mirchi New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सारी कास्ट एंड क्रू ओवर एक्साइटेड थी कि उनको इंडिया के बाहर वो भी यूरोप जाने का मौका मिल रहा है, और इंडियन ऑडियंस इसलिए एक्साइटेड थी कि उनको बड़े पर्दे पर यूरोप दिखेगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी शॉट इन यूरोप, और इसके लिए ना राज कपूर साहब भाई वैजंती माला को एंड राजेंद्र कुमार को खुद को और भी कास्ट एंड क्रू के करीब 10-15 लोगों को बाहर यूरोप लेकर के गए थे। ये पहली इंडियन फिल्म थी जो बाहर जाकर के शूट हुई थी और वो भी यूरोप में शूट हुई थी। सो इंडियन ऑडियंस में ना ऑलरेडी बाय वर्ड ऑफ माउथ ये स्प्रेड हो चुका था कि इसमें तो फॉरेन भी है। तो कहते हैं कि संगम को देखने ना लोग फैमिली भर भर के आई थी और बार बार आ रही थी। इतना मेजर क्रेज हुआ कि अंधेरी का एक सिनेमा हॉल था और उसकी जो टंडन फैमिली एज इन द ओनर्स वर द टंडन फैमिली, उन्होंने अपने हॉल का नाम रख दिया था संगम हॉल, जो आज भी संगम हॉल के नाम से फेमस है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
2: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: चले।
1: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, यानी गाड़ी में बैठोगे एंड वी विल हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो किसी से इतना प्यार करते हैं कि वो जहाँ जहाँ रहते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाते हो, चाहे फिजिकली हो ना हो, मेंटली उनके साथ होते हो। और जिस भी सिचुएशन में वो बंदा होता है ना, उनको एनकरेज करते ही रहते हो, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई साया है तो उसे ना हमेशा पकड़ के जकड़ के रखो। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना एंड गुड नाइट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

त्रिपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपा

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब लड़कों को उनकी लाइफस्टाइल और चॉइसेस के लिए जज किया जाए तो उस जजमेंट को पर्सनली लिए बिना खुद को कैसे एक्सेप्ट करें, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, बहुत एक कमाल की फिल्म आई थी 2016 में, दंगल नाम की। और दंगल नाम की जो पिक्चर थी वो उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल फैसेट मुझे नज़र आया कि जो जो बेटियां होती हैं ना, वो उनको इस बात के ताने दिए जाते हैं कि वो लड़कों के गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो लड़कों जैसे ड्रेसअप करती हैं, वो लड़कों जैसा बॉय कट रखती हैं एक्सेट्रा। और मेरे मन में ये सवाल आया कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो लड़कों के जैसे रहना पसंद करते हैं, ड्रेसअप पसंद करना चाहिए, उनकी चॉइस है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो लड़कियां ही होती हैं वो ही उनका ज्यादा मजाक उड़ाती हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं वो लड़की हूँ जिसे लड़कों की तरह रहना पसंद है, तो मैं अपने आप को क्या कहूँ?
4: अगर आपको वो चीज कंफर्टेबल रहती है, पहले तो हमें क्या है, वैलिडेशन बहुत चाहिए होता है सोसाइटी से।
3: सही बात।
4: हम सब ऐसे ही बड़े होते हैं, हमें लगता है कि अगर सामने से वो चीज एक्नॉलेज्ड है तो वो राइट है। अगर उसके एक्नॉलेजमेंट या वैलिडेशन नहीं मिलता तो वो रॉन्ग है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उससे पहले तो अपने को परे जाना होता है कि सब मुझे एक्सेप्ट करेंगे। अगर मुझे वो चीज कंफर्टेबल है, चाहे वो ड्रेसअप में है चाहे कुछ है, वो गलत नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो गलत नहीं है, लेकिन भले वो सबको एक्सेप्टेबल नहीं है, इट इज ओके। हमारा तो समाज आजकल ऐसा हो गया है कि गलत को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलने लगी है कई चीजों में।
3: सही बात।
4: आप राइट होंगे तो आपको ज्यादा परेशान करते हैं। ये तो चलो ये केस है, छोटी छोटी चीजें भी कई बार स्कूल के बच्चे कहते हैं हम ड्रिंक नहीं करते या हम स्मोक नहीं करते, तो भी हमें परेशान करते हैं, तो भी कहते हैं आप ओल्ड फैशनड हैं, कूल नहीं है, ऑर्थोडॉक्स हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो गलत नहीं होना चाहिए, वो चीज राइट होनी चाहिए, और हम अपने को समझाएं कि सब उसको एक्सेप्ट करेंगे वो जरूरी नहीं है, उससे अपने को परे ले जाएं। वो जो डिजीज है कि सबको प्लीज करना है, सबको खुश करना है, अगर आप एक बार उससे ऊपर उठ गए, और उसके लिए अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाने की जरूरत है।
3: लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, क्योंकि आप छोटे एज से ही ये लोगों से सुनते आ रहे हैं, आपको अच्छा फील नहीं कराया जाता, तो आपके अंदर वो सहन शक्ति बिल्ड नहीं होती, क्योंकि छोटी उम्र से ही आप ये फेस करते आ रहे हैं, क्योंकि आपके हैबिट्स थोड़े अलग होंगे, धीरे धीरे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस टाइप बन जाती है। उस समय आपने आपको ये कहना कि बाकी लोग क्या मेरे बारे में कहते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट।
4: छोटी उम्र में अगर आप हर्ट हुए तो समझ में आता है, क्योंकि आपको इतनी समझ नहीं थी। लेकिन बड़ी उम्र में तो आप अपने को चेंज कर सकते हैं ना। कितना समय तक हम विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे? ठीक है, एक समय था कि मुझे भी समझ नहीं थी कि उसके साथ कैसे डील करना है।
3: सही बात।
4: आज मैं मैच्योर हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं ऐसी हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आज आप अपने से कैसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, आप कंपनी किस प्रकार की रखते हैं, आप अपने को कैसे एजुकेट करते हैं, किस प्रकार का लिटरेचर कंज्यूम करते हैं, आप चाहे तो आज अपने को उससे बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए आज आप विक्टिम प्ले न करके, जैसे वो कहते हैं सर्वाइवर, तो आप चाहे तो उससे बाहर आ सकते हैं, औरों को भी हेल्प कर सकते हैं।
3: सही बात है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब घर में ओपिनियंस अलग होने लगे और बात डिसएग्रीमेंट से लड़ाई तक पहुंच जाए तो सिचुएशन को शांति से कैसे हैंडल करें, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कई बार क्या होता है, मैं कई घरों में देखता हूँ कि पॉलिटिकल व्यू को लेकर ना बहुत बार वाद विवाद हो जाता है, और बात यहाँ तक भी पहुँच जाती है कि अगर मेरे पॉलिटिकल व्यू से आप सहमत नहीं हैं तो दो दो तीन तीन दिन तक बात ही नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में इस सिचुएशन को कैसे संभालें?
4: ये एक्चुअली ईगो है क्लियरली, क्योंकि कोई भी व्यू होना गलत बात नहीं है।
3: सही बात है,
4: लेकिन उस व्यू के साथ जब हम अटैच हो जाते हैं और अगर सामने वाला उसके साथ अग्री नहीं करता तो गुस्सा आता है जो उनके साथ हो रहा है, और अगर आप बार बार उनके साथ अग्री करते रहे तो भी उनको आदत पड़ जाती है इस चीज की।
3: सही बात है,
4: क्योंकि कई बार पेरेंट्स को फिर डर लगता है कि अगर अग्री नहीं किया तो फिर
3: वो और बुरा मान जाएंगे
4: तो मैं समझती हूँ कि ये उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपको अपने व्यूज के ऊपर फर्म रहना चाहिए। अगर हमें कोई चीज नहीं ठीक लगती और फिर भी हम उसके साथ अग्री करते हैं तो हम उस आत्मा को और कमजोर बनाते हैं।
3: हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। हमें अक्सर हम आई थिंक सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं,
4: हम सोचते हैं कि किसी तरह बात टल जाए।
3: सही बात
4: है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, वो बच्चा होता है ना, उसको अपनी चीज मनवानी होती है तो पहले वो रोने लगता है, चाहे वो एक चिप्स का पैकेट ही है। आपको देना है तो दे दे।
3: सही बात है।
4: और अगर नहीं देना है तो नहीं दे। पर अगर वो रोता है और अगर आप उसकी डिमांड फुलफिल कर देते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि कोई भी डिमांड को अगर फुलफिल कराना है
3: तो रोने लगो,
4: तो थोड़ा सा रो, थोड़ा सा सड़क पर लेट जाओ, थोड़ा सा चीखो
3: तो
4: चिल्लाओ।
3: बड़े इंसान को पता है मैं गुस्सा करूंगा तो ये मान जाएंगे।
4: ये शुरुआत एक्चुअली छोटे से ही होती है,
3: बहुत अच्छी
4: बात। और फिर धीरे धीरे आप उस चीज में कब आप वैसे बन जाते हैं आपको भी नहीं पता, फिर आपको लगता है मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा थोड़ा हल्ला मचाऊंगा तो वो चीज हो जाएगा।
3: तो सिस्टर, आपने बहुत कमाल की बात कही, क्योंकि मेरी बेटी मुझे एक किताब के बारे में बता रही थी, उसका नाम है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। मार्शल रोजनबर्ग ने इसके बारे में लिखा है, जहाँ पे वो यही कहते हैं कि अग्री करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार आप समझ जाएं उसके पीछे ह्यूमन इमोशन क्या है, शायद आप उसको बेहतर हैंडल कर पाएंगे। तो बहुत कमाल की आपने बात कही।
4: ह्यूमन इमोशन पीछे यहाँ पर यही है कि हर व्यक्ति को एक्सेप्टेंस चाहिए। हम व्यक्ति को एक्सेप्टेंस दे दें, लेकिन अगर आप उसका व्यू आपको ठीक नहीं लगता तो उसके साथ अग्री करने की जरूरत नहीं है।
3: सही बात है।
4: तो आप बहुत कामली कह सकते हैं कि अगर आपका ये व्यू है, आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी आपका कोई पर्सपेक्टिव है, उसका कोई कारण होगा, लेकिन फिर भी इसमें फर्म रहना चाहिए कि नहीं, आई डोंट अग्री विद दैट। क्योंकि अगर आप हर बार अग्री करते जाएंगे तो वो भी फिर उस चीज की भी उनको आदत पड़ जाती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: HG Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या बार बार नेगेटिव सोचना उस फियर को रियलिटी जैसा महसूस करवा सकता है? आइए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ऐसा कई बार होता है कि बहुत ओवरथिंक करता है दिमाग, और ओवरथिंक करते करते क्या है कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो दरअसल सच भी हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करें?
4: संकल्प से सिद्धि तो होती है ना। थॉट्स जो है वो रियलिटी में बदल जाती है, क्योंकि आप उतना अटेंशन दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उस डायरेक्शन में ग्रेविटेट करते जा रहे हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है
3: जी।
4: लेकिन ओवरथिंक तो आपके हाथ में है ना।
3: सही।
4: आप किसी चीज के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं का मतलब है आप उस चीज के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं।
3: सही।
4: और सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। ओवरथिंकिंग माना जब भी ज्यादा थॉट्स होते हैं तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकते। ज्यादा थॉट्स की हमेशा जो क्वालिटी होती है वो नेगेटिव होती है। सो एक्चुअली में ये थोड़ा सा अपने पर अवेयरनेस की जरूरत है। कोई भी बात है उस पर सोचना तो पड़ता है, लेकिन कितना सोचना है, क्या सोचना है, वो हमारे हाथ में है। आप प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बजाय सोल्यूशन के बारे में सोचे एक चीज, और व्यक्ति के बारे में सोचने के बजाय आपका रोल क्या होना चाहिए वो सोचना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या अपनी कंपनी में खुश रहना लोनलीनेस नहीं बल्कि इनर पीस की निशानी हो सकती है? आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कई बार मैं बाथरूम में अपना इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, मैं राह चलते गाना गा रहा होता हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैं अपने आप से बहुत सारी बातें करता हूँ और ये जितने क्रिएटिव लोग हैं उनसे भी बात करता हूँ, ऐसा होता है। तो हम ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं लेकिन हम अपनी दुनिया को रचा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अवार्ड मिल रहा है, मैं एक एक्सेप्टेंस स्पीच दे रहा हूँ, उस स्पीच में मैं क्या बोलूँगा, किसको एड्रेस करना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीजें हम सोच रहे होते हैं, कल्पनाएं हैं हमारी। ये भी ओवर थिंक के कैटेगरी में आता है?
4: नहीं, ओवर थिंकिंग के कैटेगरी में वो आता है जो आपको अनकम्फर्टेबल फील कराता है, जो आपके अंदर में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, चाहे वो फियर है, वरी है, या पेन है, हर्ट है। तो ओवर थिंकिंग इज बेसिकली थिंकिंग नेगेटिव। As long as you're thinking right
3: and you're feeling happy about it, तब ठीक है।
4: आप comfortable हैं क्योंकि वो तो जरूरी भी तो है। Ordinary thinking भी जरूरी है, positive thinking भी जरूरी है। अगर आपकी कोई speech है तो उसके बारे में prepare करना
3: वो ठीक है,
4: जरूरी है, ठीक भी नहीं है, जरूरी है कि आप मिस्टेक नहीं करें। तो आप उसको इमेजिनेशन का नाम देना चाहे या प्रिपरेशन का नाम देना चाहे, एक्चुअली हर बार वो इमेजिनेशन नहीं है। आप मेंटल लेवल पर जो प्रिपेयर करते हैं फिर वो वर्ड के लेवल पर आता है, फिर वो एक्शन के लेवल पर आता है, तो वो तो एक अच्छी बात
3: है। कई बार लोग बोलते हैं ना, या ख्याली पलाव बना रहे हो, तुमको अवार्ड अवार्ड को मिल नहीं रहा है, तुम अपने आप से ही बात कर रहे हो, तो वैसे केस में
4: देखो दो चीजें हैं। एक है कि कोई चीज होने वाली है और आप उसका प्रिपेयर कर रहे हैं,
3: वो अलग।
4: दूसरा चीज है कि आप कुछ चाहते हैं, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन उसके बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं
3: वो भी ठीक है,
4: वो भी ठीक है। आप सीड सो कर रहे हैं,
3: ऑब्सेस नहीं होना है,
4: ऑब्सेस भी नहीं होना है। और इमेजिनेशन एक अलग चीज होती है, मतलब जिसको आप ख्याली पुलाव कह रहे हैं कि वो है ही नहीं, वो चीज आप ऐसे ही उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, पर कोई आपका एम है, अभी हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज प्रिपेयर कर रही हूँ कि 4 साल के बाद ओलंपिक्स के अंदर हम खेलेंगे और मुझे ये मेडल जीतना है, और
3: आप तो एफर्मेशन हो गया।
4: हाँ, वो भी एक प्रकार की प्रिपरेशन है। अब उसको आप ख्याली पुलाव नहीं कह सकते, दैट इज समथिंग दैट यू आर एमिंग फॉर। तो आप उसको एम कर रहे हैं, चाहे आप उसको ड्रीम बोले, एम बोले, गोल बोले, आप उसको बार बार इमेजिन कर रहे हैं, अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ माइंड, फिजिकली भी आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: it's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: सोने के वक्त बार बार आने वाले थॉट्स को काम करके माइंड को रेस्ट कैसे दे, आइए जाने।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, एक बात आप हमेशा कहती हैं कि ज्यादातर जब इंसान सोचता है, ओवरथिंक करता है, वो नेगेटिव होते हैं ज्यादा थॉट्स। कई बार आप कहती हैं, मैंने पर्सनली ये खुद देखा है कि मुझे नींद बहुत जल्दी आती है, लेकिन जब मुझे नींद नहीं आती ना, तो आजकल मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगा हूँ कि नींद क्यों नहीं आ रहा, क्या चल रहा है दिमाग में, और मैं देखता हूँ नेगेटिव थॉट्स नहीं है लेकिन रैंडम थॉट्स है, कुछ काम के बारे में है, कुछ ऐसा चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है
5: right.
4: बट वो चल रहा है दिमाग में तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, ओवर थिंकिंग है, थिंकिंग है, जो भी है, वो नेगेटिव दिशा में नहीं लेकिन है फिर भी, इसको कैसे हैंडल करें?
5: अगर वो नेगेटिव नहीं है और अगर चल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस समय आपको उसके बारे में नहीं सोचना।
4: हाँ, मुझे इस वक्त सोना है।
5: इस समय आपको सोना है या आपको अपने माइंड को कहीं और लेकर के जाना है, तो वो भी मन, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कमजोर मन के निशान
4: जी।
5: शक्तिशाली मन का मतलब होता है आप अपने मन को जहाँ लगाना चाहे
4: वहीं लग जाए,
5: जितना समय के लिए लगाना चाहे
4: और
5: जो सोचना चाहे वो आपके कंट्रोल में।
4: तो ऐसे सिचुएशन में करें क्या, हो रहा है ऐसा,
5: तो उस समय पर आपको अपने को समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप नहीं कर पा रहे हैं स्लो डाउन, तो आप दिशा बदल दे। इसलिए कहते हैं कि सोने से पहले माइंड बहुत चीजों को प्रोसेस कर रहा है, तो आप कुछ गाइडेड मेडिटेशन का सहारा लें, कोई जर्नलिंग का सहारा लें, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं कि उसकी दिशा चेंज हो, जो आपको सोचना है।
4: मेबी
5: इट्स द एंड ऑफ द डे, तो आप अपनी चेकिंग करना चाहते हैं कि आज मेरे से कोई कुछ गलत तो नहीं हुआ, आप कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप कोई गाइडेड कॉमेंट्री प्ले करके केवल अपने माइंड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसा करें विच इज गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स योर स्लीप।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या पास्ट को पकड़कर रखना गिल्ट को बढ़ाता है या हमारे अंदर कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन उसे जाने नहीं देता, आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, अपनी दुनिया में खोए रहना ना सबको बहुत पसंद है। हाल फिलहाल में एक दोस्त से मिला मैं, और वो 51 साल का हो गया है। वो कह रहा है कि यार मेरे को ना यार अपनी प्रेमिका कॉलेज वाली बहुत याद आती है, और मैं बहुत मिस करता हूँ यार उसको। उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मुझे, लेकिन वो जो बात थी ना यार, वो बात बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। और कभी कभी गिल्ट भी होता उसे, तो ऐसे में उस एहसास से वो बाहर कैसे निकले।
4: कभी कभी मुझे लगता है कि जिस चीज को हम भुला नहीं पाते हैं, वो हमारा वो वर्जन होता है जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है जिस समय हमें किसी से प्यार होता है।
3: हाँ, सही बात है।
4: हमने कुछ एक्सपीरियंस किया होता है उस समय, चाहे वो फ्रीडम होता है, अपना बेस्ट वर्जन होता है, हम उस समय गिविंग के मोड पर होते हैं, हम कंप्लीट ट्रस्ट कर रहे होते हैं, हम प्रेजेंट में होते हैं, लाइफ को इतना पकड़ा नहीं होता, फ्लो कर रहे होते हैं। तो वो जो मेरा वर्जन होता है ना, उसको हम मिस कर रहे होते हैं।
3: सही बात।
4: हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति ने आपके एक वर्जन को ट्रिगर किया है। आप चाहें तो उसको वापस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि वो आप ही हैं। वो केवल एक ट्रिगर था, स्टिमुलेंट था, एक चीज वो। दूसरा, उन्होंने गिल्ट की बात की है। गिल्ट तब होती है अगर हमने कुछ गलत किया है। अगर हमने कुछ गलत किया है, आपको लगता है, रियलाइज होता है, तो अगर पॉसिबल है तो अपॉलोजी मांग लेनी चाहिए। जब भी हमें रियलाइज हो, अगर जब हम ये नहीं पता होता कि सामने वाला आपको माफ करेगा कि नहीं,
3: लेकिन आपके हाथ में जो वो तो कर सकते हैं,
4: आपके हाथ में जो है, क्योंकि गलत है तो हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम्बल होकर के ह्यूमिलिटी से कम अपनी गलती को रियलाइज करें, सामने वाले से अपॉलोजी मांगे, अगर कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ ठीक कर सकते हैं तो करें, और कम से कम वो गलती जीवन में दोबारा नहीं करें।
3: यादों में रहना बहुत अच्छा लगता है सिस्टर, और नॉस्टैल्जिया में रहना सबको पसंद है, लेकिन फिल्मों के राइटर हैं हुसैन दलाल उनका नाम है, उन्होंने बहुत कमाल की बात एक बार कही थी कि कहीं पे जाने के लिए कहीं और से निकलना बहुत जरूरी है, और ये इसके लिए भी बहुत फिट बैठता है।
4: वैसे भी देखो, ओनली दिस मोमेंट इज रियल। हम में से कोई भी पास्ट में जा नहीं सकता। कई बार फ्यूचर की बहुत वरी करते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारा 80% टाइम या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में। 80%
3: प्रेजेंट में रहता है।
4: आप कभी कोशिश करके देखें, किसी के साथ बैठे हैं आप, एक बार एक्सपेरिमेंट करना
3: हमारे जमाने में।
4: और कहना हम 30 मिनट्स के लिए पास्ट की बात नहीं करेंगे और फ्यूचर की बात नहीं करेंगे,
3: तो बात क्या करेंगे।
4: एग्जैक्टली।
3: सही बात है।
4: इतनी वो आदत हो जाती है, पर आपको एक मिलेंगे जो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, वो है बच्चे।
3: हाँ बिल्कुल,
4: जितने इसी मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अभी अभी जिससे लड़े होंगे,
3: हाँ, उसी से बड़े प्यार से बात करेंगे,
4: क्योंकि उनको वो नहीं रहता, वो उसको होल्ड ऑन नहीं करते हैं, और इसीलिए इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, और उनकी उस एनर्जी से हम भी अपने पास्ट और फ्यूचर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरणम्।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर सरफराज हैं, कानपुर से लिखते हैं, क्या हर बार हाँ कहना अच्छी बात है या कभी ना कहना भी जरूरी होता है?
3: नहीं, हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है, लेकिन ना कहने का तरीका ठीक होना चाहिए।
2: हाँ, वो गुस्से में नहीं होना चाहिए।
3: हाँ, मना सभ्यता से करें, डिग्निटी से करें। ना तो कई बार कहनी पड़ती है। पहली बात तो अगर आपको लगता है कि वो चीज राइट नहीं है तो भी आपको ना कहना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, मैं आपको हाँ कर दूं, किसी चीज के लिए कमिट कर दूं और फिर ना करूं,
2: हाँ।
3: चाहे वो एक टीम के अंदर ही कुछ काम हो, मैं कहूं नहीं नहीं हाँ जी करना था पर मैं करूं नहीं उस चीज को, तो भी वो चीज राइट नहीं है कमिट करके करना। और कभी ऐसा हो सकता है मैं कर भी सकती हूँ लेकिन आज मेरे पास पॉसिबल नहीं है, मैं ऑलरेडी इतनी कमिटमेंट्स ले चुकी हूँ, तो भी मुझे आपको ना कहना पड़ेगा। सो देयर बी मेनी मेनी सिनेरियोज जहाँ पर ना कहना पड़ेगा, लेकिन रिस्पेक्टफुली कहें,
2: बहुत बढ़िया,
3: डिग्निटी के साथ कहें, सभ्यता के साथ कहें, कई जगह पर ना कहना पड़ता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर, एक सवाल आया है, परी लिखती हैं, हम अक्सर दूसरों की बात मान लेते हैं लेकिन अपने मन की आवाज को इग्नोर क्यों करते हैं?
4: नहीं करना चाहिए, दोनों के प्रति ध्यान देना चाहिए। हमें वो करना है जो सही है। अपना मन भी कई बार धोखा देता है, ऐसा नहीं है कि हमारा मन हर बार जो कहता है वो राइट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो दूसरे हर बार कहते हैं वो हमेशा राइट होते हैं। तो कोई मुझे मेरे मन की माननी है या आपके मन की माननी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो राइट है, जो सही है, वो करना है। तो चाहे वो आपका मन है या दूसरे का मन है, पर वो परख शक्ति होनी चाहिए कि राइट क्या है।
3: वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है।
4: विजडम अनुभव से भी आता है, स्क्रिप्चर से भी आता है, अच्छी बातें सुनने पढ़ने से भी आता है। और व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। जब आपको नहीं पता था तो इग्नोरेंस भी कोई क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने विजडम को डेवलप करने की मेहनत करनी चाहिए कि आपको ये क्लैरिटी हो कि राइट क्या है और आप राइट कर सकें।
3: स्टीव जॉब्स ने बहुत कमाल की बात कही थी, उससे कई लोग जरूरी नहीं मानते हैं, अग्री करते हैं कि डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर इनर वॉइस। वो इसलिए कह पाते थे ये बात क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है।
4: नहीं, अगर आपको अपनी इनर वॉइस पर कन्विक्शन है
3: तब जरूर करें,
4: तब जरूर करना चाहिए। देखो, कई बार हमें क्लैरिटी होती है कि ये राइट है, पर हम दूसरों के ओपिनियंस में हमें अपने पर डाउट करने लग जाते हैं, सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। एक है ये चीज की क्लैरिटी नहीं है कि मेरा मन जो कह रहा है वो सही है। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसका मन करता है कि मैं मुझे ये करना है। पेरेंट्स समझदार होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये राइट नहीं है, ये आपके भले के लिए नहीं है। तो वो एक क्लैरिटी अलग चीज है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। एक एक कन्विक्शन है अपनी बात पर, अपने प्रिंसिपल पर आपको फेथ है, लेकिन आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है जस्ट बिकॉज पीपल डोंट अग्री विद यू और या पीपल डोंट एक्सेप्ट यू।
3: और ये बहुत बात जरूरी है क्योंकि जब तक वो कन्विक्शन नहीं आता आप कुछ आगे नहीं कर पाएंगे।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन

आई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। देश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
2: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला और तुम्हारी मॉर्निंग का ये रिमाइंडर है कि अडल्टिंग इज बेसिकली जस्ट सेइंग हाँ हाँ आई एम ओके एंड कैरिंग ऑन विद लाइफ, जो चाहे प्रॉब्लम्स चल रही हो। वैसे देसी मॉर्निंग्स ना, उनकी एक अलग ही वाइब होती है। अलार्म बजता है, हम स्नूज करते रहते हैं, फिर मम्मी की आवाज आती है और हम उठ के खड़े हो जाते हैं। ये सब अगर तुम मिस करते हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि हम थोड़ी सी बॉलीवुड की गॉसिप करेंगे, थोड़ा सा देसी नॉस्टैल्जिया, अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स एंड ऑफ कोर्स साथ साथ में होने वाली है मेरी बकबक एंड वो मिर्चीदार बैंगर्स जो तुम्हारे लिए प्ले करने वाले हो मैं आज के मिर्ची मॉर्निंग्स में। मेरा नाम है प्रिसिला एंड कम एंड से हाय ऑन इंस्टाग्राम। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। और एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है राखी के उपलक्ष्य में, जिसके बारे में थोड़ी सी देर में बताऊंगी तुम्हें। तब तक के लिए मिर्चीदार बैंगर सुनो और सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन दिस डे। यानी कि हम टाइम ट्रैवलिंग करके पता करेंगे हिस्ट्री में आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट था। 1619 में द फर्स्ट रिकॉर्डेड ग्रुप ऑफ एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स अराइव्ड इन जेम्सटाउन, वर्जीनिया, a deeply tragic turning point in American history. 1794 mein the Battle of Fallen Timbers took place in Ohio, ending major armed Native American resistance in the Northwest Territory. Fast forward to 1920, the NFL was founded because apparently America looked at sports and said, "Ha yaar, ek aur league bana dete." 1960 mein Senegal became fully independent from the Mali Federation. 1968 mein Soviet and Warsaw Pact troops invaded Czechoslovakia, crushing the Prague Spring Reforms, a sobering chapter of Cold War history. 1975 mein NASA launched Viking 1, which eventually became the first spacecraft to successfully land on Mars and send images back. And today is also World Mosquito Day, marking Ronald Ross's discovery ki female mosquitoes hi transmit kar paate hai malaria. So yes, machharon ka bhi din aata hai, samjhe? And aaj India mein observe kiya jata hai Sadbhavna Divas, yani ki Harmony Day. Aur harmoniously aage badhte, because Nanak Foods presents Mirchi Karega Bandhan Pura, bringing sweetness to your life. In association with Virani Jewelers on Oak Tree Road, festive special offers chal rahe hai wahan par, 22 carat gold and diamond jewelry par. Visit karo viranijewelers.com right now. तुम्हें अपने क्यूटेस्ट, क्रिंजियस्ट, प्रिटीएस्ट मोमेंट भेजने हैं अपने सिबलिंग्स के साथ पिक्चर के फॉर्म में। रजिस्टर करने के लिए लिखो राखी, व्हाट्सएप करो 9033647244 पर अभी के अभी अपने पिक्चर्स के साथ, या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड यू कुड विन हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: के खराब तू झरना कहीं तेरी दुकान पे पंगा ना लूं मेरे साथ काफी हो गई बक बक
1: बाकी बातें पीने बाद
0: शुभ हो बादशाह।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागी।

0: Priscilla, it's hot.
1: Good morning, मेरे दोस्त. मैं हूँ तुम्हारी होस्ट. मेरा नाम है Priscilla and you're listening to Mirchi Mornings. और आप सुनने वाले हो weather update. Right now we are sitting at 68 degrees Fahrenheit. Skies are clear and it feels like 69 degrees Fahrenheit. लेकिन don't get too comfortable. Around noon होने वाला है थोड़ा सा partly cloudy माहौल and 4 बजे शायद rain expected है. Today's high is 82 degrees Fahrenheit with the feels like temperature potentially reaching to 86 degrees Fahrenheit. You know, humidity, sunshine or wind ki wajah se. And here's the important bit. There is a flood watch in effect. So if you're heading out to work, later going out for errands, keep an eye on the weather and give yourself some extra travel time. Rainfall over the next 24 hours could reach around 38 millimeters with wind gusts up to about 8 kilometers per hour. So compared to yesterday, आज काफी कूलर रहने वाला है माहौल. कल का पीक टेम्परेचर था 87 डिग्रीज फारेनहाइट, while today tops out around 82 डिग्रीज फारेनहाइट. So बाहर निकलते टाइम SPF 50 +++ लगाना तो बिल्कुल मत भूलना, और अगर जरूरत ना हो तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स गोना रेन हेवली. एंड साथ साथ में लेयर के प्लेयर बनकर बाहर जाओ एंड मिर्ची सुनते रहो. एंड व्हाइल यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, लेट मी क्विकली रिमाइंड यू कि नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इज ऑन. डू यू हैव दैट one sibling picture with you that instantly makes you go, अरे यार हम कितने cute हैं. ऐसे pictures हमको भेजो अभी के अभी. And you could win some amazing hampers courtesy Nanak Foods, bringing sweetness to your life. फटाफट से type करो Rakhi and send it to 9033 Mirchi. That's 9033647244 along with your cutest, bestest sibling moments के pictures. And तो मुझे DM भी कर सकते हो. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. This is in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road, jahan par festive special offers chal rahe hain 22 carat gold and diamond jewelry par. Visit karo viranijewelers.com. and abhi Mirchi Dar bangers ka time hai on Mirchi Mornings with me Priscilla. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. Priscilla here and welcome back to Mirchi Mornings. जहां पर अब हम सुनने वाले हैं Mirchi Hour का 3. सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अगेंस्ट व्हाट ही कॉल्ड द मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन अनाउंस किया है और ईरान को फाइनेंशियली या बिजनेस सपोर्ट देने वाले कंट्रीज और एंटिटीज को सिवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग दी है. दिस इज अ डेवलपिंग इंटरनेशनल स्टोरी, सो वील कीप यू पोस्टेड. एंड नंबर टू पर इंडिया के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट से अराउंड 100 पेंडिंग क्रिमिनल केस दूसरे जज को ट्रांसफर किए गए हैं. रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने पिछले 4 महीनों में 10 केसेस में 22 डेथ सेंटेंसेस दिए हैं. लॉयर्स और लिटिगेंट्स की कंसर्न्स के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से केसेस रीअसाइन हुए हैं. एंड लास्टली स्पोर्ट्स से इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन एंड जॉश टंग ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसा बैक टू बैक बोलिंग मोमेंट क्रिएट किया जो टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हुआ है. दोनों ने कंसेक्यूटिव डिलीवरीज पर 5 विकेट होल्स कंप्लीट किए. रॉबिन्सन ने 9th विकेट लिया और नेक्स्ट बॉल पर टंग ने मोहम्मद अब्बास को आउट कर दिया. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर. मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ बने रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर एंड कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033 6472 44. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी।
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो यही मिली है आपको?
2: जी जी जी बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की
2: जी जी।
3: उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
2: राइट बिल्कुल।
3: चलिए अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड
2: पूजा
3: पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
2: जी डेफिनेटली।
3: ओके अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: क्या सर, मतलब नहीं मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
3: नहीं नहीं ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली है तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा है ना।
2: सर मेरी बात
3: तो सुनिए। हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
2: आज मैं तो प्लीज रहने दीजिए इस चीज को, मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन
2: मेरा बन गया वो कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की स्टोरी जो है ना, इट्स गिविंग अ वेरी देसी लेसन। क्या है वो लेसन, लेट्स फाइंड आउट। बजट छोटा भी हो सकता है, लेकिन माँ का सपोर्ट अनलिमिटेड अगर मिल जाए ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। चाइना में न्यू लाई नाम की एक फिल्म है, विच इज क्रिएटेड बाय फिल्म मेकर शिन यू मैंग एंड हिज मदर सून ली फान। इट्स गोइंग वायरल। क्यों? पार्टली बिकॉज पीपल कॉल्ड इट वन ऑफ द वर्स्ट चाइनीज फिल्म्स बिकॉज ऑफ इट्स रफ एनिमेशन। लेकिन एक प्लॉट ट्विस्ट है, द फिल्म मेड ऑन ऑलमोस्ट एन अनबिलीवेबली टाइनी बजट विच इज अराउंड $200 हैज रिपोर्टेडली गॉन ऑन टू अर्न अराउंड $3 million। एंड मॉम जो है डिडंट जस्ट चीयर फ्रॉम द साइडलाइंस। सून ली फान टॉट हरसेल्फ 3D एनिमेशन, वॉइस्ड द कैरेक्टर्स एंड सैंग द थीम सॉन्ग, all to help her son's dream come true. So basically, मम्मी ने कहा बेटा तू ड्रीम फॉलो कर, बाकी मैं संभाल लूंगी, जो कि दुनिया की हर मम्मी करना चाहती है, कहती है और कर भी देती है। Honestly यार, forget about 5-star reviews. Sometimes माँ के हाथ का 5-star rating is all you need. And I'm not talking about गाल पे चाटा. I'm talking about a pat on your back. And speaking of something sparkling, Tanishq presents Festival of Diamonds, जहाँ पे तुम्हें 25% off मिल रहा है diamond value पर और making charges पर। और साथ साथ में अगर तुम्हारे पास पुराना gold रखा है अपनी मम्मी का, जो कि 18 carats से above है, उसे लेकर जाओ Tanishq पर, 0% deduction पर exchange कराओ। So तुम्हारा jewelry box जो है वो बहुत ज्यादा excited होना चाहिए अभी। Of course Tanishq पर Festival of Diamonds चल रहा है, जहाँ पे terms and conditions applied है, और अभी चल रहा है मिर्ची mornings मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे। ऑगस्ट 20th इज क्लियरली हैविंग अ सेलिब्रिटी मोमेंट बिकॉज आज के दिन बर्थडे केक तुम शेयर कर रहे हो कुछ बड़े ही बड़े बड़े नामों से। टुडे वी सेलिब्रेट एक्टर एमी एडम्स, एंड्रू गारफील्ड, सिंगर डेमी लोवाटो एंड लेजेंडरी म्यूजिशियन रॉबर्ट प्लांट। प्लस बर्थडे स्क्वाड में वी गॉट एल रोकर, बेन बार्न्स, मीशा कॉलिन्स, की ह्यू क्वान एंड फ्रेड डस्ट। तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है, जस्ट रिमेम्बर तुम फेमस लोगों के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हो, बस उनके पास रेड कार्पेट है और तुम्हारे पास तुम्हारा फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर 47 हैप्पी बर्थडे बेटा वाले मैसेजेस अभी पड़े होंगे। एंड नाउ स्पीकिंग ऑफ फैमिली, मिर्ची करेगा बंधन पूरा इज हियर, ब्रॉट टू यू बाय नानक फूड्स। राखी के इस पावन अवसर पर पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप पर टाइप करो राखी, दैट इज RAKHI। टाइप करने के बाद अपना पूरा नाम टाइप करो और उसे अपने सिबलिंग पिक्चर के साथ भेज दो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। एंड यू कैन ऑल्सो डीएम मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, टू डबल योर चांसेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट एंड यू कुड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड विद फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट करो वीरानीज्वेलर्स.com, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। सो अभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो या राखी के त्योहार की तैयारी कर रहे हो, सेलिब्रेट योर पीपल, शेयर योर मेमोरीज एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला।

बजा दूं गाना बजा दूं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: Authentic, original, and better than our right.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you on Mirchi Mornings. And now time hai gold and silver ka rate update janne ka.
2: Raj Jules wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,400. $4,400 ke mark par wapis gold pahunch gaya hai aur market aggressively upward trend par hai. Isse pehle gold ke prices upward trend par jaye, aap aaiye 22 carat gold jewelry, 18 carat colorless diamond jewelry, GI certified natural diamond jo platinum ki ring mein set ho. Raj Jules ki unique financing option jisme aap 0% interest pe zero down payment ke saath bina किसी हिडन फी बिना किसी इंटरेस्ट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक कर सकते हैं. वो खूबसूरत सी ज्वेलरी आज घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी के. कैसे? आइए राज ज्वेलर्स के साथ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें और अप्रूव होने पे आज ज्वेलरी घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना इंटरेस्ट के पैसे दें और गोल्ड का प्राइस आज लॉक करें ताकि जब 9 महीने तक अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ा हो तो वो बेनिफिट आपके साथ आपके गहनों में आपके गोल्ड में आपके पास रहे. आइए rajjewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें.
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी मिर्ची दार गानों की बारी है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.